मान प्रतीत न आइया, सहज ना लगो पाओ, शब्द साध ना पायो, मान हठ क्या गुण गाए, नानक आया सो प्रवान है, जे गुरमुख साच समाए। महला तीजा, आपना आप ना पछाणे मूड़ा, अवरा आँख दुखाए, मुंडे दी खसलत ना गईया अंधे, विछोड़ चोटा खाए, सतगुर कै भै भन ना घड़ियो, रह अंक समाए, आन दिन सहसा कदे ना चूकै, बिन शब्द दुख पाए, काम क्रोध लोभ अंतर सबला, नित धंधा करत विहाए, चरण कार देखत सुन थके, दे मुके नेड़े आए।

नानक सतगुर तद ही पाए जा विचों आप गवाए पौड़ी जिस दे चित वसिया मेरा स्वामी तिसनों क्यों अंदेशा किसे गल्ले दा लोड़िए। हर सुख दाता सबना गल्ला का तिसनों ध्यान दिया क्यों निमख घड़ी मुंह मोड़िए। जिन हर ध्याया तिसनों सर्व कल्याण होए नित संत जना की संगत जाए बहिए मुंह जोड़िए। सब दुख भुख रोग गए हर सेवक के सब जान के बंधन तोड़िए। हर कृपा ते हुआ हर भगत जना के मुंह डिठै जगत तरिया सब लोड़िए। सब दुख भुख रोग गए हर सेवक के सब जन के बंधन तोड़िए। हर कृपा ते हुआ हर भगत जना कै मुंह डिठै जगत तरिया सब लोड़िए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक महला तीजा। मन प्रतीत न आइया सहज ना लगो पाओ शब्द साधना पायो मन हठ क्या गुण गाए नानक आया सो प्रवान है जे गुरमुख सच समाए। धन वाहिगुरु साहिब जी।

आओ सिख सतगुरु के प्यारियों, गावो सच्ची बाणी। बाणी तां गावो गुरु केरी, बाणी आसर बाणी गौड़ी महला पंजवां। सा मत निर्मल कही अत धीर, राम रसायन पीवत बीर। हर के चरण हृदय करि ओट, जन्म मरण ते होत छोट रहाओ। सो तन निर्मल जिति उपजै न पाप, राम रंग निर्मल प्रताप। साध संग मिट जात बिकार, सब ते ऊचे होए उपकार। प्रेम भगत राते गोपाल, नानक जाचे सा दरबाल। गौड़ी महला पंजवां। ऐसी प्रीत गोविंद स्यों लागी, मेल लय पूर्ण बड़ भागी रहाओ। पर

एक बिगसै ज्यों नारी, त्यों हर जन जीवे नाम चितारी। पूत पेख ज्यों जीवत माता, ओत पोत जन हर स्यों रता। लोभी आनंद करै पेख तना, जिन चरण कमल स्यों लागो मना। बिसर नहीं एक तिल दातार, नानक के पर प्राण आधार। गौड़ी महला पंजमा। राम और सायण जो जन गीदे, चरण कमल प्रेम भक्ति बीते। रहाओ आन रसा दिसे सब छार, नाम बिना निफल संसार। अंधकूप ते काढ़े आप, गुण गोविंद अचरज प्रताप। वाण त्रिण त्रिपवन पूर्ण गोपाल, ब्रह्म प्रसाद जी संग दयाल। कहो नानक सकत नहीं सार, मान ले जिस जिन हार। गौड़ी महला पंजवा। नित प्रत नावण राम सर कीजे, चोल महारस हरे अमृत पीजे। रहाओ निर्मल उदक गोविंद का नाम, मज्जन करत पूर्ण सब काम। संत संग तें गोष्ठ होए, कूड़ जन्म के किल विख खोए। सिमरें साध करें आनंद, मंथन रवे आ परमानंद। जिसे प्रापत हर चरण निधान, नानक दास तसे कुर्बान। गौड़ी महला पंजवा। सो किश कर जित मैल ना लागे, हर कीर्तन में ए मन जागे। रहाओ एको सिमर ना दूजा पाओ, संत संग जप केवल नाओ। कर्म धर्म नेम व्रत पूजा, पार ब्रह्म बिन जान ना दूजा।

बहुत उर्ध तप साधन साधे अनक लाभ मनोरथ लादे हर हर नाम रसने आराधे। सिमरत शास्त्र वेद बखाने जो ज्ञान सिद्ध सुख जाने नाम जपत प्रभ स्यों मन माने।

ब्रह्म की कोई तृष्णा रस पंखस अत तीख्यन मुखी पास काटन हर जगत गुरु गोबिंद चरण कमलता के करो निपास कर कृपा गोपिंद प्रपीतम दीनानाथ सुनहु अरदास कर कै लिहो नानक के स्वामी जियो पिंड सब तुमरी रास कौड़ी महला पनमा हर पेखन को सिमरत मन मेरा आस प्यासी चितवोदन रानी है कोई संत मिलाफे निरा रहा सेवा करो दास दासन की अनक पांत तिस करो नहोरा तुला तार तोले सुख सगले पिन हर दर्श सबो ही थोरा संत प्रसाद काय कुन सागर जन्म जन्म को जात बहोरा आनंद सुख भेड़त हर नानक जन्म कृतार्थ सफल सवेरा हरा कौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किन बेद मेरे गुसाई मेरे राम राय

विपर्दा हमें पाई, माया मोहे सबो जग सोया, इहो भरम कहो क्यो जाई। एका संगत एकत ग्रह बसते, मिल बात न करते पाई। एक बास्त बिन पंच दहेले, ओह बास्ते गोचर ठाई। जिसका गृह तिन दिया ताला, कुंजी गुर सो पाई। अनक उपाब करे नी पावै, बिन सतगुर शरणाई। जिनके बंधन काटे सतगुर, तिन साध संगत लवलाई। पंच जना मिन मंगल काया, हर नानक भेद न पाई। मेरे राम राय इन बिद मेरे गुसाई। सहज पिया प्रमुखिन में नाठा, मेरे ज्योति जो समाय रहा। रहा दूजा कौड़ी महला पन्मा, ऐसो परचो पायो। करी कृपा दयाल बीठला, सतगुर मुझे बतायो। रहा जात कत देखो, तत तत महे, मोहे इहो विश्यास होय आयो। कैपे करू अरदास बिनती, जो सुनते है रख रायो। लहो सहसा बंधन कुर तुरै, ता सदा सह सुख पायो। होना सा सोई फन होसी, सुख दुख कहाँ दिखायो। खंड ब्रह्मण का एको ठाणा, गुर परदा खो दिखायो। नौ निध नाम तान कठाई, तो बाहर कैठे जायो। एक कनक अनक भांत साजी, बहु प्रकार रचायो। कहो नानक भरम गुर खोई है, इव तत् तत् मिलायो। गौड़ी महला पंजमा, औद कटै दिन सरण नारे, मन गुर मिलका सवार रहा। करो बिनंती सुनो मिल मीता, संत टैर की बेला। इहां खड़ चलो हर लाहा, आगे बसन सहेला। इहो संसार विकार सहसे में, तरियो ब्रह्म ज्ञानी। जिसे जगाए पियाए, हर रस अकात कथा तिन जानी। जाको आए सोई बिहाजो, हर गुरते मने बसेरा। निज कार मेहर पाओ सो सहजे, बाहर न होए को फेरा। अंतर जामी पुरख विदाते, श्रद्धा मन के पूरे। नानक दास एही सुख मांगे, मुख कर संतन के तुरे। गौड़ी महला पंजमा, राख पिता प्रभ मेरे, मोए निरकुन सब कुण तेरे रहा। पंच बिखादी कृपा, राखो राखन हारे। खेद करे अर बहु संताव हे, आयो सण तुहारे। कर कर हारियो अनक बोपाती, छोड़ै कतहु नाई। एक बात सुनता की ओटा, साध संग मिट जाय। कर कृपा संत मिले मोहि तिन ते, कर कृपा संत मिले मोहि तिन ते, धीरज पाया। संति मंत दियो मोहि निरपो, गुर का शब्द कमाया। जीत ले उए महाबिकादी, सहज सहेली पाणी। कहो नानक मन पिया प्रगासा, पाया पद निरपाणी। गौड़ी महला पंजमा, ओहो बनासी राया, निरपो संगत मारे बसते।
यो डारण कहाँ ते आय रहा। एक मैर तू हुए अफारो, एक महल निमानव। एक मैर तू आपे आपे, एक महल गरीपानव। एक मैर तू पंडित भगता, एक मैल खल होता। एक मैर तू सब कुछ ग्राहज, एक महल कछु न लेता। काट की पुत्री कहाँ कर बपरी, खिलावन हारो जाने। जैसा पे करा पे बाजी कर, हो तैसो ही साज आने। अनक कोठरी बहुत पात क्रिया, आप हुआ रखवारा। जैसे महल राखे तैसा रहना, क्या एह करे बिचारा। जिन कछ किया सोई जाने, जिन ए साबित साजी। कहो नानक अपरंपर स्वामी, कीमत अपने काजी। कौड़ी महला पनमा, छोड़ छोड़ रे बिखिया के रसुआ। और ज रहो रे पापर कापर, ज्यो किरखे हरे आए पशुआ। रहा जो जाने तू अपने काजै, सो संग न चाले तेरे तसुआ। नांगु आयो नांग सतासी, फेर फिरियो अरकार गरसुआ। पेख पेख रे कुसम के लीला, राच माच तिनहु लोहसुआ। छीजत डोर दिन सर रानी, जी को काज न कीनो कछुआ। करत करत एवही बरदानो, हारियो उगते तन कीन सुआ। जो मोहियो उन मोहली पाला, उते कटे नाही रस चसुआ। जग ऐसा मोह करे दिखायो, तो शरण पर्यो ताज गर्भ सुआ। मार्ग प्रभु को संत बितायो, जड़ी नानक दास भगत अरजसुआ। गौड़ी महला पनमा, तुझ बिन कवन हमारा। मेरे प्रीतम प्राणी तारहा, अंतर के बेद तुम ही जानी। तुम ही सजन सहेले, सर्ब सुखा मैं तुते पाए। मेरे ठाकर अगे अगे तोले, वर्ण साको तुमरे रंगा। गुण दान सुख दाते, अगम अगोचर प्रभ अविनाशी। पूरे गुरते जाते, भ्रमपो काट किए निह केवल। जबते हो में मारी, जन्म मरण को चूको सहसा। साध संगत दरसारी, चरण पखार करो गुरु सेपा। बार जाव लख बरिया, जेह प्रसाद यो भव जर तरिया। जन नानक प्रै संग मिरिया, गौड़ी महला पनमा। तुझ बिन कवन रचावे तो ही, तेरो रूप सगर देख मोइ रहा। स्वर्ग प्यार मृत भू मंडल, सर्व समानो एक ओही। शिव

पतत पावन ठाकर नाम तुमरा सुखदाई निर्मल सीतलोई ज्ञान ध्यान नानक वडियाई संत तेरे सोंकार करोही गौड़ी महला पंजवां मिलहो प्यारे जिया प्रभु की आत्मा राति अरहा अनक जन्म भोजोनी प्रमेया बहर पर दुख पाया तुमरी कृपा ते मानक दे पाई है देहो दर्शन लाया सोई हुआ जोत पाणा अब नकन ही कीता तुमरे पाणे परम मोह मोया जागत नाही सोता बिनो सुनो तुम प्राण पद प्यारे कृपा निध दयाला राख लिहो पिता प्रभ मेरे अनाथे कर प्रतपाला जिसनों तुम्हें दिखायो दर्शन साध संगत कै पाचे कर कृपा तूर देहो संतन की सुख नानक एहे बाछै गौड़ी महला पंजवा।

सहज आनंद तना संग हुन समसरयव न दाते जगत उदाहरण से ही आए जूझन दस प्यासा उनकी शरण परे सोतरिया संत संग पूर्ण आसा ताके चरण परोता जीवा जन के संग निहाला भगतन की रेन हुए मन मेरा ओहो प्रभु कृपाला राज चोपन अव जो दिसै सब किस जग में घाटिया नाम निदान सद नवतन निर्मल इो नानक हरतन खाटिया गौड़ी महला पंजवा जोग जुगत सुनियायो गुरते मोको सतगुर शब्द बजा रहा नौ खंड प्रथमी इस तन में रफिया निमख निमख नमस्कारा देखिया गुर की मंदरा कानी दृढ़ो एक निरंकारा पांच चेले मिल पे इकतरा एक सके बस की है दस पैरा कन्या क्या कारी तब ने बर जोगी थी है परम जराए चराई बपूता पंथ एक कर पेखिया सहज सुख सोकिनी भुगता तू ठाकर मस्तक लेखिया जह पो नाई तयासन बाध्यो सिंगी अनत बाणी तात विचार डंडा कर राखियो जोगत नाम मन पानी

0: हमरा मन मोहियो गुरमोहन, हम विषम पई मुख लागे।
1: एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आसा महला चौथा। संत कर चौथा।

श्लोका नार श्लोक में महले पहले की लिखे टुंडे अस राजे की तुनी श्लोक महला पहला।

उड़न जाए सिद्ध ना हुए नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी।

एक होदा खे चले था तिना पिका एका जल थल जिया पूरिया लोआ आकर आया कार ओए जे आखे सो तुह जाने तिना पि तेरी सार नानक पुक्ता नानक पक्ता पुक्ता।

तू करता करना मैं नाही, जाहु करी न हो। बलहारी कुदरत वसिया, तेरा अंत ना जाई लख्या रहा। जात में जो जोत में जाता, कल कल

दान विषादान प्रोसादान दाना श्रदान नाम दान श्री अमृतसर जी दे इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जोगर टल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखा दा मानी मां मत उची मत दा राखा वाह गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा साई दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब होर गुरद्वारियां गुरधामा जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दे दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे माण नितानियां दे तान न्योटियां दी ओट सच्चे पिता अकाल पुरख धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आप जी ने उद्दम बख्शे आप जी की पावन हजूरी विच अमृत वेड़े तो दीवान सजे सजे हुए दीवाना विच आप जी की मुबारक बाणी दे श्री सहज पाठ नितनेम दे रूप विच उपरंत आसा की वार दे कीर्तन होए सतगुरु जी समुचियां सेवावां निभाउंदियां हुईयां बेअंत प्रकार दियां भुल्लां दी खिमा बख्शणी अगे तों समत बख्शणी पड़ी सुनी बाणी दा भाव दाराई संगत दे हिरदियां ते वसाउणा। हे अकाल पुरख सभना परिवारां विच आपसी एकता इतफाक प्रेम भरोसे दियां दातां बख्शणियां आप जी के हजूर आप जी कियां प्यारियां संगतां वल्लों आप जी के बख्शे खजानियां विच्चों कड़ा प्रसाद दी देग सज के हाजर है दर ते परवान होवे करो कृपा परवानिया प्रसाद संगत विच वरते अपने इलाही फरमान बख्श के कृतार्थ करो। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी सरबत दे कारज रास करने से प्यारे मेल जिना मिलिया तेरा नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहराया गया पई अकाल की तबै चलायो सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द में राज करेगा खालसाया की रहना। खुआर होए सा मिलेंगे बचे शरण जो बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

सहज न लगो पाओ, सबदे साध न पायो, मन हठ क्या गुण गाए, मन प्रतीत न आईया, सहज न लगो पाओ, सबद साध न पायो, मन हठ क्या गुण गाए, नानक आया सो प्रवान है, जे गुरमुख सच समाए महला तीजा, अपना आप न पछाणे मूड़ा, अवरा आख दुखाए, मुंडे दे खसरत ना गईया अंधे, मुंडे दी खसरत ना गईया अंधे, बिछड़ चोटा खाए, सतगुर कै पै भन ना कड़ियो, रहे अंक समाए, अनदन सहसा कदे न चूकै, बिन शब्द दुख पाए, काम क्रोध लोभ अंतर सबला, नित धंधा करत बिहाय, चरण कर देखत सुन थके,

और सत्संग जी इन्नी हाजरी प्रवान करने जी कीर्तन करदे तो हुई फुलां दी खिम बख्शने जी आओ संगत दे गुरु साहिब जी बख्शन जोगो फुलां नच तारनी जी आओ हुण ज्ञानी गुरु चरण सिंह उन्हां पासों गुरमत विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

महाराज कहिंदे ने जिहड़े पैरां विच घुंगरू पता किहड़े ने, भी सदा निहाल ही रवे, ऐन लगन लगी रवे वाहिगुरू दे विच, आ है वो पैरां दे शैणे, पैरां दे घुंगरू।